भगत सिमर कर गुरु नानक नहीं त्याई फिर अंगद गुरदे अमरदास रामदास हुई सहाई अर्जन हर गोबिंदरों सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जह डिठे साब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया करण उन दया बताई सब थाई हुए सहाय।

दर्शन देखनी मांगो तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा, हे बिनंती सुन प्रभ मेरे, देह नाम कर अपने चेरे, धर्मा दे ठाडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजै खोल किवार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुखो टल गुरु सेविया।

असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताव असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मुख पक्षार असंख मोन लिवलाए तार।

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावै तिलका मान सुनया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मलना हो सब गुण तेरे मैं नाही कोए बेण गुण कीते भगत न होए सुअस्त आत्माणी ब्रह्माओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर ती माहु कवन जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत माहु न कोई जा करता सिर ठीक कौ साजे आपे जाने सोई किव करे आखा किव सलाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साई वड्डी नाही कीता जा का होवै नानक जे को आपौ जाने अगै गया न सोहै पातालां पाताल लख आगा साई आगा उस ओड़ ओड़ भाल थके वेद कहन को

पौखलायगन तप्ताओ पांडा पाओ अमृत तेत टाल कड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिन

समाते अनंगी अनाम्य समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती में पूते कलंकंग बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सुन परम रूपे नमो जोग जोगे सुन परम सिद्धे नमो राज राजे सुन परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता भेखी परमी अभोगी अभोगते नमो जोग जोगे सुन परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नो प्रेत अप्रेत देवे सुतर मे नो वो नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो साह नमो भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो स्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्र सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अधु उर्ध अर्धं अगं उघहर्ता परम परम परमेश्वर पुरुषपाल सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयाल अशेदी अभेदी अनाम अकाम समस्त पराजी समस्त सताम तिराजोर चाचरी शानदार जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने नमस्त्वं नृनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राय राजे नमो साज साजे नमो साज साहे नमो मा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो शोक शोके नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्सं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिद्य अभिज्ये समस्तं प्रसिद्धे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणाशी सदा सर्वदा सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे चल भोगे चल राजे अटल साजे अखल धर्म लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग त्राणं सर्वंग सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भोक्ता सर्वंग जोगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रमान देव पेवे आदोदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेखाद पुरख उदार मूर्त अजोन आद असेख हुंदे सौर न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा विसावे फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन बेख धाम हूं नह जाहे सर्व मान सर्वत्र मान सदै मान तता एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलने

सर्वंगता सर्वंगता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंतर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता प्रसावलशंत्वे प्रसाद। नमो नर्कनाशेषदेव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकाम्य निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न दाते न माते न जाते न पाते न साकं सुरी के अमितो अमीके सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती शंतु प्रसाद। के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हमें सुल सलाम है समस्त सुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन अल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहंद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है अग्रीबुल निवाज है आरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय क्रीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं प्रणास है बहिस्तुल निवास है के सर्बुल गवन है हमें सुलरवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परमीस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमें सुल अपेख है जमीनुल जमा है अमी कुल मा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलं प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजव स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो बसा है कि आत्मा प्रवाह है कि अचल अनंग है कि अमितो अपंग है मद पहार छंद त्वे प्रसाद।

जो नियमो नी नराग नरंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामं विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विभूते सदा सचिदानंद सत्रम प्रणासी करी मुल्को निंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं क्री मुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुक्ते स्वयं पव सुपंग सर्वदा सर्वजुक्ते

ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पते अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है भगते न जे नर श्री पत के प्रस है भग ते नर फेर न दे तरेंगे। कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बकते हां लगायो नाथ फिरे हो नियत सात समुद्रन

कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंप हुया, जुगा स्वरूप सुयं पव।

जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखत हुए मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सवटारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निक नहीं है रच्छा वे ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहारि हो ताके ताप तन कमय हर वो रिद सिद्ध कर्मों सब होई दुष्ट शाह श्वास कह न कोई

सुनै गुंगजो याहि सुरसना पावई, सुनै मूढ़ चितलाए चतुरताय आवई। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहै, हो जो या की एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्थ सहस फुन तीन कहिजय। भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया।

सुनर मुंडने अमृत खोज देसो अमृत कुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी चंद सब तुम उपाय।

कि कर्म कमाया तुद शरीरा जातु जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसया

जी गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सुलागा सेव गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी सतगुरु जिनी न सेवियो शब्द न कीतो विचार अंतर ज्ञान न आयो मृतक है संसार हामें अवगुण परे एक गुण नाही मृत छाड विखे विख खाही माया मोह परम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरसंगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई।

खंड ब्रह्मंड पताल दीप रविया सब लोई, जिसे आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। खंड ब्रह्मंड पताल दीप रविया सब लोई, जिसे आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। सोचाए सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार। सहस सियाणपन लख हो हिता एक ना चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवनु आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्मै जे बुझै ता हो मैं कह ना कोई।